0: ki çalan or çerisi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सेवना बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो, जो अपना अनुभव सुनावे ये वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देती है, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

का एहसास अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चाहते

see. Practice.

Isso.

0: assim. इशारा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय छोटा।

किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। अचानक
Serrano.

0: के अपने एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी

0: സുഖ്യം വന്നയോ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सुख्यम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सुख्यम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है वो धोखा बनेगा। आप निश्चिंत, ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सुन, आपके कर्तव्य को सुनकर और भी सीखे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते हो कि झूठी बात

0: 함주사 가래. 리그 산가네기 아키야 기스네티
1: Jim.

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप की मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पाप और बच्चों का एक दिवस।

कर सकते हो और पापा भी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रह्मा पाप का आधार लिया। Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, अभी क्या चाहते? हर बच्चा क्यों कह बाप दादा, कुछ समय से लेके ready।

What's up?

साधारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखति वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: काफी

0: Chícaro, que agar koi bhi fikin aata hai, tufan aata hai, to tufan tufa ban jata hai. Tufan tufan nahi, lekin tufa ban jata hai. Koi bhi
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने बैठे हो लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो पाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमद कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है
3: वर्तमान से।

叫，这是叫，非是इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है जहां जाओ, जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि ऐसे नहीं योग के समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब सेवा करते हो तो ये चीज़

चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करूँ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलने का। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, को देख दिल में अपने प्रत वाह में वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्रह्मांड परिवार वाह। ये बाबा के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय के परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है। रैम दिल पर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

लगा को टाइट करने से। अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी मन के मालिक बन जैसे

संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि इस व्यर्थ संकल्प संकल्प कब है फिर ज्यादा

久。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज़

संस्कारी ऐसे।

देव मेरे संस्कार ये राइट है कहना कि मेरे पुराने संस्कार है, मेरी नेचर है। चलाते भी है

Сиван бег дышнарена. Абикапи свапана.

0: sais.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Hustle.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इच्छा पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली हाथ काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लूँ, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर दे। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और आत्माओं को मानसिक परेशानियों से चुराने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Ghost, that they

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Siamo a Green. Le nome. Fuck.

Peace.

la musique qui dit.

ASMR.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिस भी सेवा स्थान का सेवक का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते? सेंटर्स में VIP की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अन्नपूर्ति कराना क्षमा के ऊपर परवाने बनाना चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने अन्नपूर्ति की कान खोलो। अच्छा है यहां तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बन। पक्के परवाने बनेंगे कराने से। इतने तक अनुभूति होती है बहुत अच्छा है, स्वर्ग है। यही यथारथ ज्ञान है, नॉलेज है। सेवा का रिजल्ट अच्छा, अभी अन्नपूर्ति स्वरूप पर अनुभव करा। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर, सहयोगी बनाई है उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा सेवा में कोर्स कराने चाहिए। इससे साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात पाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है या बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बातें ऐसे होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति के आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कपड़ा तो है, मारो अच्छी तरह से। अर्थात सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या हूं को कहा जाता है संप्रत स्वरूप।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

साधन है जो आवश्यक साधन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वउन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वउन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mr. Tarts, उसके ऊपर अटेंशन खिंचवा नहीं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। टाइम को तीव्र पुरुषार्थ में लगाना है। छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते, इसलिए व्यर्थ को भी कब करूं। टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर पाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ, तो पाप दादा यही सौगात पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे। पसंद है तो पसंद चीज तो दिल से।

Tipo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा ये अलबेलापन और रायल आलस।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले साथ साथ पाप के आशाओं

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय ना सिखाएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपकी हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा यहाँ से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारथ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्म इंद्रियोचित बनना। हर कर्म इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक

जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव कर, दादी को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते। Shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाता है। इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

और वो

सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: पुरुषार्थ कर रही है। जमा का पुरुषार्थ आप ही कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाते हैं। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लेके, चाहे तीन दिन का प्रोग्राम कराओ चाहे एक दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य, लक्ष्य एक समय एक और चारों और देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रख। लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का, सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके। आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ, अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सकते हैं ना, युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: 喜欢看阿基伯尼卡阿达尔本杰的若尼伯
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: If

one.

Hey.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सान नहीं होता है, तो आपका भी परिवार ना। तो बहुत बढ़ रहा है तुमको अशांति, तो अब रहम दिल बनो। Awesome.

वरदान से राजा अधिकारी बनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलती है, तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है क्यों? सारा वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र Yeah. मनसा को हल्का नहीं करना। क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन का जो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

किससे भी प्रस्तुति में।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: दृढ़ संकल्प द्वारा मेजॉरिटी पास जैसे तन के लिए अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो, ऐसे मन के लिए
1: दृढ़

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यार है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये मिलन विचित्र है, सब इस बात में वाह वाह वाह कह रहे हैं।

里，心目せ har bacha ka tene te va pa pa pa mera baba

Chris.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे सोचते बहुत है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वा नहीं होगा, इस सोच में ज्यादा रहते, ये तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा, ये होगा होगा कब गीत गाते रहते, लेकिन
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: saat masih 100% stay plenamente. Você
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: उल्ली में क्या करते? आपने भी अपने जीवन को रंगा है, लेकिन आपका रंग कौन सा? आप सभी का रंग है पाप के संग का रंग। तो सारा समय संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बनाया लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो इस स्थूल रंग बना दी। Yes.

Arthur.

0: 是谁？啊，这边狐狸，一个是哪不来的？一个是哪不来？ की सबकी है, आप जलाते हो वो भी जलाते हैं। फिर बनाते बिना जलाने के मनाते नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक स्वयं का स्वमान, दूसरा समय का मैं तो आप साधारण नहीं हो। पूर्वजों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सच्चे दिल पर बहुत सहज राशि हो जाते। जब भोलानाथ राशि तो धर्मराज काशी आंख भी नहीं उठा सकते। ऐसे बाप के प्यारे लेकिन सिर्फ चेक करना कोई सने में
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल सजा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहती है हंसाती है बाप दादा को, अच्छा कहती है ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता। शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खाली हो जाती है, लेकिन

संस्कारों में समय नहीं, युद्ध में समय नहीं गवा। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार सोचना है, बस नहीं करना है, नहीं बोलना।

stressa.

0: सौरभ मेला।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोचते रहेंगे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी का विशेष Okay.

संसार सम

Samadhi. सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता है, कोई सच्चा भी।

जिस्म समझ आ रहे आप कर कुछ नहीं सकते। अच्छा सुना, कर कुछ नहीं सकते तो समाचार कहां जाएगा? बुद्धि में तो गया ना, श्रीमत में पारमिक क्यों की जो बाप की आज्ञा सुनते हुए नहीं सुनो? तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली मानो एक बार ही आपको समाचार सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहां जाएगा? आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन गए ना? जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आके सुने। क्यों? क्या आपने सुना? वाह, तो उसको समझा। तो ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन अगर सुनते हैं तो कर सकते हो कुछ तो करो। सुनो, या इतनी ताकत है आप में जो उसको सदा के लिए फुल स्टॉप लगा, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा। बिल्कुल उस व्यक्ति से दृष्टि से समाचार सुनने वाली संकल्प गिरना पावगन। इतनी पावर है आप में, तो सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी। थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते गिर ना पाओ या चाल चलन में
웃었다.

你怎么明白的？समझते हो

0: 自己都都这么玩的
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: भी बहुत उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बहुत उतर जाए तो अच्छा है, यहाँ आया है
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत नहीं, दिल आराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहे। दिल में बाप समाया हुआ है माया की, किसी भी रूप की, चाहे सूर्यम रूप हो, चाहे रायल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप से माया आ नहीं सकती। स्वपन मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना बाप दादा, मनसा में भी मेहनत मुक्त देखने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

की आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sí.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सम्मान देना, अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना, विश्व के आगे भी विश्व कल्याणी, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को
2: परिवार का बच्चा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Jab ek to ko dekh.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी ऐसी अनुभूति शुरू करें।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: See, but

Coba cek.

0: स्वपरिवर्तन और चारों और भी परिवर्तन में सहयोगी बनने में दोनों बात में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना। तो अब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराय माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को भी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। आप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं।

भी पाप कहती है कि पाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब पाप का मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो पाप भी कहते हैं। जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही

0: ले तो जाना ही है। सब बाप चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सजनी बन के चल
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

Fit.

0: ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कलप में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसीलिए बाप दादा सदा

0: में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक ऐसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावनार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो, और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बच्चों की

0: आपको शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितने दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, समान संपर्क से खुशी का कसन। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि सीढ़ी का नहीं, समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहाँ जाओ, चाहे सुख वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड, 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ परमान अभी Just

संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्का पर नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात इस हल्के

Spurane.

ही सोचते हैं, वो तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी, उसे मुख से सदैव अगर पुरुषार्थ सुनते वह पूछते तो उनके मुख में एक ही शब्द रहा, अब

राजा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: भक्त ने देखा कि कमजोरी देती तो लेकिन फिर वापस ले जाने देखो वो वापस नहीं आता। Thank you.

ये सोचेंगे कि ये मुझे चोरे या मैं चोरू, कौन चोरेगा कौन। अच्छा, अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए दोबारा, फिर क्या करें? फिर रख देंगे ना, रखेंगे कि फेंक देंगे, फेंकेंगे। तो ये चीज क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब आपको पसंद नहीं है और आपको वो चीज आपके पास फिर से आती है, तो क्या आप गंदी चीज संभाल के रखेंगे? रखेंगे? कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई खराब चीज दे देवे तो क्या करेंगे? अलमारी में सजा के रखेंगे? नहीं, नहीं। वापस क्यों देते? क्यों लेते? ये बाप दादा कहते हैं वापस लो। श्रीमत है ये, नहीं है ना? फिर क्यों लेते? वो तो वापस आएंगे क्योंकि उसका आपसे प्यार है, लेकिन आपका प्यार नहीं है। उसको आप अच्छे लगते हो और आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो क्या करना पड़े? तो अभी आज कम से कम जब वर्ष 5000 वर्ष के लिए विदाई लेता है तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्राह्मण जन्म, एक ही जन्म है, ज्यादा नहीं है, एक ही है। और उसमें भी कल का भरोसा नहीं, वो 5000 की विदाई लेती है तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई दो, दे सकते हो। हाँ जी, तुम करते हो। लेकिन जिस समय वो वापस आती है ना,
वो तो झूठे, वो नहीं झूठेगा, आप चोरो तो झूठेगा, जो आपने उनसे प्यार बहुत कर दिया तो वो नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़े। तो पुराने वर्ष को इस सब

0: triste panca.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा यूज किया।

0: Zrobcie mgny nejmir mi etosy. Etosy, etosy. Jest odczyntanej. Soczyntan artat. Parifat. To result mi. Bagdada sunare. Final result hogi usme pehli marks practical dharna swarup ko milegi jo dharna swarup
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साथ दिल।

0: 삶의 문달 동가른 가시간 맨내 바람 소주 예소주 그참 비슈하게 내 바람 걸내 바람
1: Teacher, some day,
0: student, some day. मुझे करना है। प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है। मधुवन वाले समझे हमें करना है। वही मधुवन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। आज समस्या को समापन, शब्द को ही समापन हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे किस्सा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा पाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। कुछ चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे, वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो, आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी।

What's up?

0: उसके लिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: शॉट इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी है। आवश्यकता जहाँ है वो मेरा है, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और जान चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना। बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, पढ़ेंगे ना, सभी ने उठाया। हम सब एक है, ये तो सेवा के कारण। कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक ही रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को भी समझाने लगते हैं, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम ऐसा कर और आप साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ एक चाहिए, योग लगता नहीं है तो क्या करें। उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखना चाहिए, डॉक्टर क्या कहते हैं, है डॉक्टर, उल्टी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए, डॉक्टर भी कहता है उल्टी करनी चाहिए। अच्छा ये तो हुआ था नकल डॉक्टर, और आप सभी जो है वो मन के डॉक्टर हो, धन्यवाद दे तो अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ तो अगर मन में कोई उलझन हो तो क्या करे, कहाँ उल्टी करे, बाबा के सामने उल्टी करे।
2: Thank you.
1: कंप्लेन है ना कि हम तो बाप

0: 是命。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारे दुखी है, बहुत परेशान। तो अभी रैम दिल बनो, रैम की लहर, बेहद की फैराग, फिरती द्वारा फैलो। अभी सभी साथ ऊंचे थे, ऊंचे परम धाम में बैठ, बाप के साथ ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि तो वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना। तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद की रैम का वायुमंडल

ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਬਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇਵਾ ਮੋਹਬਤ।

Você.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मनोबल को बढ़ाओ, मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या समान संयोग से करते हो, मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की वाह थोड़े समय की इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर स्थित ऊंचा पाप के साथ परम धाम के स्थिति में स्थित हो, थोड़े समय में भी सेवा की तो आपको उसकी प्रलब्धत कई गुना ज्यादा

संपरद्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो, ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो स्थापना के आत्मे पाप के मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप आप भी देख रहे हो। वही

समय भी बाप के साथ
Sophie. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब सेवा में नवीनता क्या लाएं? जो अभी तक सेवाएं चली हैं, उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

suicide.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

ਘੱਟ ਸੁਪ ਕਰ ਜਿਗਿਆ ਦੋ ਟੋਟਲ ਫਿਫਟੀ% ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੋਂ

姐姐，我姐妹，阿拉贝里曼没报答的，也都等也，也都真等也，真里都什么？

我想他们把他everybody but me left here jalo ekin pap the tas of pink day kitne alapeti hoti hai kitne नीचे जाने में वालों करते तो इंसान बाप दादा को बहुत रहमत है के पश्चाताप की घड़ियां कितनी घटनों इसलिए अल्लाह पहले बच्ची लहर को दूसरों को देखने के लहर को इस सब पुराने वर्ष में मन से विदय समय

Para ir por acá.

Shopee.

Yes.

Suasco. सफल करो, हर संकल्प को सफल करो।

Carioca, aber gesoffen.

समय सफलता

さ

उसकी डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे Nick।

сообщихте. Вещей.

0: इस समय के सफलता का प्रलाप स्वतः ही प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपर्क हुए लेकिन स्वप्रत व विश्व प्रत कितना सफल किया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्मृति

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मास्टर दादा बना के अपन ने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतने विश्व की आत्माएं So

Shut up.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप मन के मालिक होते हैं।

0: 觉得。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अश्वगंधा खांसी के लिए है।
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन लोगों को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी पक्का हो गया।
1: गुलजार दादी गई थी इनों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
2: बाबा इज गिवन इट टास्क फॉर यू।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बन के ऑर्डर करो, रहती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होता। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दी, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते, इसलिए हिम्मत वाले बन तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं, तो आती

हम से थक करके बैठ जाओ और कहो पापा दाल रोटी खिलाएं। Yeah.

0: rasti ban kisu jenge to or karban hongi. Mele bilkul nyare trusty ban jao. Mera ne ye mera ban mera naam kharab hoga, meri gilani hogi, mera bachcha aur mujhe, meri saas mere ko aise karte, ye mera banata hai na to sab baate, mera जहां भी आया वहां उत्तीक का फेरा हो जाता है, बदल जाती है। अगर उत्तीक कहां भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा पन उसको चेक कर और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। हाँ ये बात है, क्या नहीं बनेंगे, सब कहना नहीं करना है, समर्थ बन और सन शोस फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सब हिम्मत वाले हो, हिम्मत है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा लगता है, उमंग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती अभी इसको मिटाने की कोशिश करो। सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ देते हैं। लेकिन बाप दादा को तो साथ सदा रखने हैं ना। ये तो हुआ तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं,

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ। आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेफिक्र मत चल,
2: बेफिक्र
1: फिक्र का है था। पापा बैठे, कारण क्या है बेफिक्र क्यों है?
2: कल क्या है ये फिक्र क्यों है?
1: दिल बड़ी है। बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है।
3: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता
1: है। तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
4: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट

कुछ तो पड़ता।

prisionero aur baap ka pyara. Oh,

0: उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See.

Yeah.

अपना मन बिजी रखना, व्यर्थ संकल्प किस में आते हैं? मन में आते हैं ना, तो बाप दादा यही चाहते हैं फिरती को।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने चोटिल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में अनेक जिसने वो ड्रिल की है वो हाथ उठाओ। की है दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? तो थोड़ा टाइम किया, बहुत टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम आठ बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम आठ बारी ये ड्रिल जरूर करनी है। जरूर देखेंगे नहीं, करनी है। चाहे मिस हो जाए तो एक घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल आठ बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अचानक और नासिक

不想干。给他那边别去哟。来干，别去我的外边。Hacer que se reír.

0: इस समय परमान आत्मा की स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं, चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

be happy. Egg sick. Exit.

Síganme, la Gael. Acha, api. Sarete.

0: ப்ராக்டிஸ்
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी समय परमान सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। माँ बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की वैराग आद से अंत तक रहा। भोलेनाथ का भंडार, ध्यान से मेरा समझ कर पर्सनल अपने वृत्त एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं सदै बच्चे अन्य अन्य बच्चे सेवा सेवा और सेवा और सभी बातों से उपराम
4: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Amen.

口内吗？

Kocha Namiljan. Kocha Shan Miljan. Kabir.

Because of this is somebody.

Is it Satan?